0: मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक

सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले दो दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिडगम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा

0: बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं, पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, होर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 श्रद्धालु की मौत, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र लिखता है, खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मानसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है, दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, कोची स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्य ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है, साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कृष फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाजों में। नासिर फराज ने इसे लिखा था और राजेश रोशन का संगीत था। बंटी और बबली फिल्म का गीत आपको अब सुनवा रहे हैं सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर की आवाजें। गुलजार की बोल है शंकर एहसान लॉय की तर्ज।

0: सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में बंटी और बबली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाजों में फिर हेरा फेरी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। समीर ने इसे लिखा था, हिमेश रेशमिया ने इस गीत की तर्ज बनाई थी। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है किशोरदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

श्रोताओं नमस्कार। आज बातें एक ऐसी अदाकारा और गायिका की जिन्होंने अपने आगमन से ही फिल्मी दुनिया में मचा दी थी हलचल। उनकी आवाज के सभी थे इतने कायल कि हर गाना होता था सुपरहिट। पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में तब कदम रखा था जब फिल्में होती थीं बेआवाज। उन्होंने जीता दिल क्योंकि था उनका अलग ही अंदाज। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज बातें होंगी अभिनेत्री और गायिका कानन देवी की।

कानन देवी एक अदाकारा और गायिका ही नहीं थी, बल्कि वो तो फिल्मी दुनिया में महिलाओं के लिए एक पहल बनकर आईं, क्योंकि ये वो दौर था जब तथाकथित सभ्य समाज की महिलाओं का फिल्मी दुनिया में आना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। कानन देवी आगे चलकर भी फिल्मी दुनिया में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में अग्रणी रही और कई काम भी उन्होंने इसके लिए किए, लेकिन वो बातें बाद में। अभी पहले सुन लेते हैं कानन देवी की वो आवाज़ जिसने अपने नाम कर ली थी लाखों दिलों की धड़कन।

करण देवी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मात्र 10 साल की उम्र से ही कर ली। वो दौर मूक फिल्मों का था। मूक फिल्मों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने बोलने वाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो बांग्ला की पहली स्टार कही जाती रही हैं। पहली फिल्म 1926 में आई, जिसका नाम था जयदेव। बोलने वाली फिल्मों के दौर में कानन देवी ऐसी अभिनेत्रियों में भी अग्रिम पंक्ति में आती हैं, जो पर्दे पर खुद के लिए गाया भी करती थी।

चार दशकों तक कानन देवी फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहीं। मूक फिल्मों से उन्होंने बांग्ला फिल्मों की ओर अपने करियर को आगे बढ़ाया। वो कई बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ फिल्में करती रहीं। वो दौर ऐसा था जब अभिनेता अभिनेत्री फिल्म थिएटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम किया करते थे, जिसमें उनका प्रति महीने का एक निश्चित वेतन तय किया जाता था और इसके बदले एक निश्चित समय के लिए अभिनेता अभिनेत्री उनके अलावा किसी और के साथ काम नहीं किया करते थे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट

में कानन देवी ने उस समय कोलकाता की मशहूर फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर के साथ करार किया। इसके पहले और बाद में भी अन्य कई बैनर्स के साथ वो करार में रही, जैसे मदन थिएटर, ज्योति थिएटर, राधा थिएटर आदि। उन्हें इस दौर की अभिनेत्रियों से ज्यादा मेहनताना भी दिया जाता था, क्योंकि कानन देवी के अभिनय के साथ साथ उनके गीत सफलता के अलग पायदान छुआ करते।

0: की डाली झूम रही है आली।
1: यहाँ कानन देवी के सफलता के किस्से सुनकर हम उनके कायल हो रहे हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उन्होंने सफलता के शिखर को छूने के लिए कड़ी मेहनत से काम लिया। 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जन्मी कानन देवी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता के व्यसन की आदत के कारण पहले गरीबी का सामना करना पड़ा और बाद में पिता के गुजर जाने के बाद नन्ही कानन देवी पर बचपन से ही माँ और स्वयं के जीवन यापन का बोझ भी आ गया। यहीं से शुरुआत हुई उनके अभिनय जीवन की।

इतनी छोटी सी उम्र से ही फिल्मी पर्दे पर मूक फिल्मों में काम की शुरुआत करने के कारण कानन देवी ने तो ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है, जिसमें उस दौर में फिल्मी दुनिया में आई महिलाओं की स्थिति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने बेबाक अंदाज में अपने कई सह अभिनेताओं की असुरक्षा की भावना का भी उल्लेख किया है। कानन देवी उन पहली अभिनेत्रियों में से एक रहीं जिन्होंने हिट फिल्मों के फायदे में एक हिस्से की बात निर्माता निर्देशकों के सामने रखी। उनकी आत्मकथा शोबेर आमिनोमी यानी सभी को मेरा नमन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी बात रखने में निडर थीं।

देवी अपने अभिनय जीवन में एक लंबे समय तक बांग्ला फिल्मों में सक्रिय रहीं। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मी दुनिया का रुख किया। ये उनके जीवन का वो समय भी रहा जब उन्होंने खुद को हर करार से मुक्त करके अलग अलग निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में काम करने का साहस किया। आगे चलकर कानन देवी ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और अपना एक बैनर शुरू किया जिसका नाम रखा श्रीमती पिक्चर्स।

कानन देवी की कई फिल्में बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ बनी और दोनों ही इंडस्ट्री में हिट भी रहीं। उनके कुछ ऐसे ही फिल्मों में शामिल हैं विद्यापति, मुक्ति, स्ट्रीट सिंगर, लगन, सपेरा, जवाब और अनन्य। कानन बाला के नाम से फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे उन्हें कानन देवी का नाम मिल गया और वो इसी नाम से मशहूर हैं। कानन देवी उस जमाने के तकरीबन सभी मशहूर सितारों के साथ फिल्मों में नजर आईं। इनमें नाम शामिल हैं कुंदनलाल सहगल, पंकज मलिक, पहाड़ी सान्याल, छवि बिस्वास, पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर, अशोक कुमार और न्यू थिएटर के मालिक प्रथमेश चंद्र बरुआ, जिनके साथ उनकी कई फिल्में आईं।

देवी संगीत से पहले ही जुड़ी हुई थीं और उनकी आवाज भी लोगों के दिलों तक पहुंचा करती थी। लेकिन उनके संगीत जीवन में एक मोड़ तब आया जब वो मिली संगीत के जादूगर रायचंद बोराल से। आरसी बोराल ने कानन देवी को हिंदी की बारीकियां भी सिखाई और उन्हें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत और भारतीय संगीत सीखने के लिए भी प्रेरित किया। कानन देवी ने उस्ताद अल्लाह रखा से संगीत की तालीम ली। उनकी आवाज में अब मधुरता के साथ साथ रियाज का जादू भी नजर आने लगा। बात जब कानन देवी के गायन की हो रही है तो यहाँ जवाब फिल्म में उनका गाया वो गीत याद आता है जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। तो चलिए सुनते हैं वो गीत।

आनंद देवी की आवाज में ये इकलौता ऐसा गीत नहीं है जिसे चाहने वालों ने रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने ये काम इसके बाद भी कई बार किया। एक समय आया जब कानन देवी को अभिनय से अलग एक गायिका के रूप में सम्मान मिला और ये वो समय था जब मेगाफोन ग्रामोफोन ने एक गायिका के रूप में उन्हें रिकॉर्ड्स के लिए अनुबंधित किया। सफलता एक ओर लोगों के मन में घमंड भी ले आती है, लेकिन कानन देवी ऐसी नहीं थी। मौका मिला तो उन्होंने इसे जिम्मेदारी समझी और तैयारी के लिए उन्होंने भीमसेन चटर्जी और आनंदी दस्तीदार से संगीत की तालीम ली। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब कानन देवी को उस दौर में उनके गीतों के रिकॉर्ड्स की बिक्री के कारण हर 3 महीने में रॉयल्टी के 25,000 रुपए मिलते थे।

कानन देवी एक ओर जहां लगातार सफलता हासिल कर रही थीं, वहीं वो फिल्मी दुनिया और समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी लगातार विचार कर रही थीं। उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने वाली वृद्ध अभिनेत्रियों के भरण पोषण के लिए महिला शिल्पी महल नामक संस्था की स्थापना की और उसे अपने खर्च पर लंबे समय तक चलाती रहीं। उन्होंने अपने काम में खुद को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी के साथ साथ संस्कृत साहित्य की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, अंग्रेजी सीखना, विदेश में जाकर फिल्मों से जुड़े कई विषयों की शिक्षा भी ली। ये बताता है कि वो केवल सफलता के पायदान ही नहीं चढ़ रही थीं, बल्कि अपने निजी उत्थान और खुद को तराशने की दिशा में भी काम कर रही थीं, जिसका असर भी पूरी तरह नजर आ रहा था।

कानन देवी ने अपने जीवन में जब भी ये महसूस किया कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ तो उन्होंने उस ओर कोई न कोई ऐसा निर्णय भी लिया जिससे आगे आने वाली अभिनेत्रियों के सामने एक मिसाल कायम हुई। जैसे कि उन्होंने जब फिल्मी दुनिया में अभिनेताओं के समान मेहनत आने की बात की तो उन्हें मना कर दिया गया। ये बात उन्हें नागवार गुजरी और उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना काम करने की ठान ली। उनका ये कदम उनके सशक्त व्यक्तित्व को दर्शाता है।

अपनी खूबसूरती, अदाकारी और गीतों के लिए मशहूर कानन देवी ने फिल्मों में भी अलग अलग किरदार निभाए। उस जमाने में प्रचलित घरेलू और बेचारी महिला का किरदार उन्होंने जितनी आसानी से निभाया, उतनी ही सरलता से वो एक मॉडर्न और सशक्त विचारों वाली महिला के किरदारों में भी ढली। पर्दे पर उनके किरदार महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बनकर सामने आया करते। वो निजी जीवन में भी इसी तरह सशक्त, प्रगतिशील विचारों का आईना बनकर सामने आती।

कानन देवी के प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली तो लंदन के हाई कमीशन में इस समारोह में मुख्य अतिथियों में से एक बनकर वो शामिल हुई। उनके गीत और भाषण इस समारोह में भारतीय गर्व को बढ़ा रहे थे। कानन देवी एक बहुचर्चित सोप कंपनी के विज्ञापन में भी ली गई, जिसे आज तक केवल चर्चित अभिनेत्रियों को शामिल करने के लिए जाना जाता है।

कानन देवी को फिल्मी दुनिया में उनके योगदान के लिए 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1976 में उन्हें फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा भी समय समय पर वो कई सम्मान पाती रहीं। कानन देवी 17 जुलाई 1992 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं और अपने पीछे छोड़ गईं अपनी बहुमूल्य विरासत और सशक्त सोच।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और गायिका कानन देवी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम का संपादन सौरव घारू। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मधुबनी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
1: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ दो या तीन डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहेम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। जब हो अपनों का साथ तो मजबूत रहते हैं हाथ, जीवन की हर कठिन राह आसान लगने लगती है जब परिवार, मित्र और शुभ चिंतकों का साथ मिलता है। अपने केवल सुख के साथी नहीं होते बल्कि कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा संबल बनते हैं। उनका विश्वास, स्नेह और प्रोत्साहन हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। जब मन निराश होता है तब अपनों का एक भरोसेमंद हाथ हमें फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही अपनापन रिश्तों को मजबूत बनाता है और जीवन में आत्मविश्वास का संचार करता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को प्रेम, सम्मान और विश्वास से सजोकर रखना चाहिए, क्योंकि अपनों का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी पूंजी है। चलिए देखें आज कौन से शहर से कौन सी हमारी सखी हमसे अपनी बातें करने वाली है। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली।
1: हाँ जी, हेलो सहेली से बोल रहे हैं। मैं मनीतू बोल रही हूँ, जोधपुर से मैडम।
0: अच्छा, आप जोधपुर से बोल रहे हैं, यानी कि राजस्थान से, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: आपने बताया जोधपुर से रहती हैं, तो वहाँ पे क्या बहुत ही प्रसिद्ध चीज है, पहले तो ये बताइए हमें।
1: मैम, जोधपुर का तो मिर्ची बड़ा बहुत फेमस है।
0: मिर्ची बड़ा यानी बहुत अच्छी चीज, मुझे बहुत पसंद है।
1: और मैडम, बारिश के मौसम में आप खाओगे ना, जब वहाँ पे खड़े खड़े, तो आप सोचोगे एक नहीं मैं चार खा लूं। हमारे
0: ये तो होता है, ये तो होता है। तो और ये तो चलिए खाने की चीज हो गई, वहाँ पे देखने लायक कौन सी चीज है?
1: मैम आप आइए, मंडोर उद्यान देखिए, यहाँ का हमारे अच्छा पैलेस देखिए, उम्मेद भवन जिसको बोलते हैं।
0: अच्छा हाँ, उम्मेद भवन, बहुत सुना है इसके बारे में।
1: बहुत से सेलिब्रिटीज की यहाँ पे शादियाँ ऑर्गेनाइज होती है।
0: तब तो आपके जोधपुर में खूब चहल पहल होती रहती होगी सेलिब्रिटीज की, तो अच्छा लगता होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारा नया एयरपोर्ट बनवाया गया है, रिनोवेशन हुआ है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो यानी आने वाली ऐसी जगह है जिसको देखना चाहिए जाके जरूर, है ना?
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: घर में मैम मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, भाई है, भाभी है और मेरे दो भतीजियां हैं।
0: अरे वाह, तब तो भतीजियों के साथ खूब मस्ती चलती होगी, है ना?
1: बिल्कुल, उनका नाम ले।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल लीजिए।
1: एक बड़ी वाली है हर्षिता और छोटी वाली है पुलकिता।
0: अरे
1: पुलकिता का आज 7th मंथ का बर्थडे है।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बधाइयाँ छोटी सी पुलकिता को, बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है, हर्षिता का भी और पुलकिता का भी। बहुत
1: दादा ने नाम रखे हैं, हर्षिता नाम रखा था।
0: हाँ जी,
1: तब सेकेंड हुई है।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा।
1: पुलकिता रखेंगे
0: वही मतलब वही है, हर्षित उत्तरा पुलकित हो ना। अच्छा, बहुत अच्छा नाम रखा है। और बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, ये बताइए मुझे, आपके शौक क्या है?
1: मैं तो घर का काम करती हूँ।
0: घर के काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ एक शौक होता है ना कि हम ये करें, इसमें हमें बहुत मन लगता है करने में, वो कौन सा काम है? वो डांस भी हो सकता है।
1: जॉब करती हूँ।
0: अच्छा, आप जॉब करती हैं? अरे क्या बात है, आप सरकारी नौकरी।

0: नर्सिंग ऑफिसर हूँ मैं।
1: बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो सरकारी नौकरी में भी हमारे कुछ अपने जो शौक होते हैं, जैसे कोई डांस किसी को पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी बहुत अलग अलग चीजें होती है, किसी को खेल पसंद होता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या पसंद है?
0: मैम गाना तो मेरे को देखो इतना आता नहीं, मैं रेडियो जरूर सुनती हूँ, वो साथ साथ वैसे गा लेते हैं, पर वो वाली सिंगिंग नहीं, लेकिन डांस का है तो वो शौक होता है, कभी कभी कर लेते हैं घर पे।
1: जब थक के आते हैं आप, है ना, जॉब से।
0: बिल्कुल
1: ये अच्छी चीज है, ये इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वो हमें थोड़ा तरोताजा कर देती हैं थोड़ी देर के लिए, है
0: बिल्कुल,
1: ना।
0: थोड़ा
1: हम
0: माइंड
1: जो
0: फ्रेश करते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि थक के आते हैं वहां पे, जो जॉब की परेशानियां होती हैं, वो सब चीजों से हम जब जूझ के आते हैं ना, तो एक कुछ थोड़े से जो पल होते हैं ना, वो हमें ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल हम उसमें अपने मन का काम करें, है ना।
0: बिल्कुल मैडम जी,
1: तो बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
0: बारिश का मौसम है, मॉनसून सीजन है, तो मेघा रे मेघा रे।
1: अरे वाह, अच्छा गाना सुना है आपने, बहुत बढ़िया गाना है। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बारे में बताइए कि वहां पे क्या ऐसी चीज है जो हम देखने आ सकते हैं वहां आपके पास।
1: सूरत में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं,
0: अरे
1: ड्रेस
0: वाह,
1: बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं।
0: अच्छा, यहाँ वहां के कपड़े मशहूर हैं बहुत ज्यादा, है ना?
1: वहाँ के कपड़े बहुत मशहूर है, सब
0: अच्छा,
1: दूर दूर से हमारे एरिया में कपड़े खरीदने आते हैं।
0: अरे क्या बात बताई आपने, तो बहुत अच्छी चीज हमें पता चली है।
1: वो जो सलमा मैडम बेचते हैं ना, नए नए आए, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: बहुत अच्छी
1: उनकी,
0: बात है।
1: फिर नेहा जी की, फिर पूजा जी की, फिर आपकी, ममता दीदी की, इन सब की आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे। बस सब तक पहुंचा देगा।
0: बिल्कुल, आप पहुंच गई सब तक आपकी आवाज। तो आप ये बताइए कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा?
1: बेटा मैं तो खाने में बिरयानी है, इसी चीजें खा लेती हूँ। बिरयानी, दाल पुलाव, खिचड़ा। खिचड़ा हमारे में बहुत बनता है।
0: अच्छा, तो चलिए और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में तो मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरा अब्बू है,
0: अरे वाह, तो सब लोग साथ
1: मेरी
0: में
1: जो
0: रहते
1: शादी,
0: हैं?
1: जी मेरी ऐसे शादी नहीं हुई, मेरी
0: हाँ,
1: दीदी की हो गई है।
0: अच्छा, आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: हेलो सहेली में मैं वो गाना पसंद करती हूँ, बॉडी गार्ड का, तेरी
0: अच्छा, आपको बॉडीगार्ड का गाना सुनना
1: मेरी कहानी है मुश्किल।
0: है? अच्छा ठीक है, तो आपके पसंद का हम ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं कलकत्ता शेख बोल रही हूँ, गुजरात सूरत से बात कर रही हूँ मैं।
0: अच्छा, सूरत से बोल रही हैं आप।
1: जी
0: तो बताइए, आपको क्या करना अच्छा लगता है? पहले तो सूरत की बात।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप पहले तो अपना नाम और कौन से शहर से बोल रही हैं ये बताइए।
1: आरती जी, आप तो हमारे ही बेटी का नाम भी आरती ही है और वो आपका प्रोग्राम बहुत ही सुनती रहती है।
0: तो अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है, 4 बजे तक सुनती रहती है और बोलती है मेरा नाम आया से गाना आया तो बहुत मजा आता है उसको।
0: अच्छा।
1: इसके लिए मुझे बोलती है कॉल लगा।
0: अच्छा तो कितनी बड़ी है आपकी बेटी?
1: मेरी बेटी मंदबुद्धि की है ना, इसके लिए वो चल नहीं पाती।
0: अच्छा,
1: और थोड़ी मंदबुद्धि की, अभी 30 साल की हुई, अभी अभी इसकी बर्थडे हुई गई।
0: अरे वाह, तो उसको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और
1: हाँ
0: बताइए अब आपको मतलब क्या करना अच्छा लगता है अपनी बेटी के साथ? अब जब समय बिताती हैं तो किस तरीके से दिनचर्या रहती है?
1: मैडम, उसको तो क्या है कि नख जो है ना वो रंगोना शायद भी उखड़ जाए ना तो नख पॉलिश रंगवा लेती। चूड़िया तो 40-50 चूड़िया पहनती है
0: अच्छा, तो
1: और
0: अच्छा लगता है उसे
1: पाँव
0: तैयार होना अच्छा
1: पायल।
0: लगता है?
1: हाँ, उसको तैयार होना, कपड़ा 2 टाइम नहाना, खाना, सब
0: अरे वाह,
1: जो मांगे वो देना,
0: बहुत बहुत अच्छी
1: उसकी
0: बात
1: ही
0: है।
1: शरारत में हमारे पूरा दिन निकल जाता
0: नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है अपने अपने आप से प्यार करना, है ना? अपने आप से प्यार करना सबसे पहले जरूरी होता है और बहुत अच्छी चीज है। वो
1: क्या
0: सजती है, संवरती है, अपने आप को अच्छा महसूस करती है, बहुत जरूरी है ये।
1: क्या है कि मेरा एक लड़का है बड़ा और वो अभी शादी हुई, लड़की हुई, वो दूर रहता है। और अभी अभी एक मेरी लड़की की शादी हुई प्रियंका,
0: अच्छा,
1: आजवा रोड पे,
0: बहुत बहुत
1: उससे
0: आपको
1: छोटी
0: बधाइयाँ।
1: थी।
0: और आपकी मतलब बेटी को ये तैयार होना अच्छा लगता है, उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, कुछ ऐसी बनाना या कुछ इस तरीके की चीजें करना?
1: नहीं, ये सब नहीं, उसको तो क्या है कि वो गाना रेडिया वो सब
0: अच्छा,
1: बहुत पहले से सुनती रहती है। वो सलमान खान बहुत अच्छा लगता
0: हाँ
1: है तो तेरे
0: अच्छा,
1: नाम का गीत सुनती है। वो
0: अरे वाह,
1: रोती है ना तो तेरे नाम का गीत सुना देते ना तो चुप हो जाती।
0: अच्छा, यानी उसे संगीत पसंद है। संगीत पता है आपको एक
1: हाँ
0: बहुत अच्छी
1: वो,
0: थेरेपी भी है।
1: हाँ, और आपका जो प्रोग्राम आता है ना वो सुनते हैं, उसमें से कुछ सीखना मिलता है, कोई खाना बनाना सीख लेते नए, कुछ बातें अच्छी सुनते तो किसी को बताते तो कोई खुश हो जाती।
0: बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत ये समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आप तक हम पहुंच पाए, आपको अच्छा लगा जो हमारा प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जो आरती को पसंद है?
1: आरती को पसंद है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: तो आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं बोल रही हूँ कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बोल रही हूँ।
0: अरे वाह,
1: सकीना है मेरा नाम, सकीना जी।
0: अच्छा सकीना जी बोल रही हैं और बारामूला
1: जी
0: कश्मीर से बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए अब
1: मैं
0: अपने बारे में थोड़ा सा, आप क्या करती हैं और आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मैं घर में काम कर रही हूँ, पश्मीना का काम कर रही हूँ।
0: अरे वाह, पश्मीना का बहुत मशहूर है कश्मीर का, पश्मीना एकदम नाम
1: जी
0: जुड़ा हुआ है
1: मैम,
0: कश्मीर के साथ में ना, पश्मीना का।
1: जी जी जी मैम
0: जी तो आपके घर में कौन कौन है?
1: जी, मेरे घर में मेरी फैमिली है, मेरे 3 बेटे हैं, तो एक बेटा है, 3 बेटियां हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, बच्चे छोटे हैं आपके कि बड़े?
1: नहीं, अभी छोटे हैं
0: छोटे हैं, तो यानी आपको पूरा टाइम उनके साथ में लगना पड़ता होगा, है ना?
1: जी मैम।
0: आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपके बच्चे स्कूल गए होते हैं, मतलब आप जब अकेली होती हैं, आप कुछ कर नहीं रही होती हैं, तो आप क्या करती हैं अपने खाली समय में जब कोई काम सब निपट जाता है घर का?
1: जब खाली में रहती हूँ ना, बस ये रेडियो सुनती हूँ और अपना काम करती हूँ। और क्या, ये पश्मीना से ज्यादा हम रखते हैं ना, हम घर का काम खत्म करके बस यही
0: हाँ,
1: करते हैं।
0: नहीं क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। अच्छा, आप इसे पश्मीना का क्या मतलब शॉल बनाती हैं कि कोई
1: जी
0: ऊनी
1: मैम,
0: कपड़े?
1: शाल बनाते हैं।
0: शॉल बनाती हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये पश्मीना का शॉल तो, और वहां तो खूब अच्छे अच्छे तरीके के मिलते होंगे। अच्छा, पश्मीना के बहुत किस्में होती हैं कि एक ही मतलब
1: जी जी मैम,
0: होता है?
1: बहुत कस्में होते हैं पश्मीना की। जी,
0: अच्छा, तो आप सब तरह का बना लेती हैं?
1: दो
0: अच्छा
1: तीन
0: अच्छा
1: कस्म के बनाते
0: अच्छा
1: हैं।
0: तो ये आप मतलब अपने घर से ही उसको सेल करती हैं या फिर आप कहीं देती हैं कि इसको?
1: नहीं, हम किसी और के जरिए ये काम करते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप ये अपने अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं जो, है ना?
1: जी
0: क्योंकि
1: मैम।
0: बहुत जरूरी है, अगर आपको कुछ काम आता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना, उसको आप अपने, जिससे कि हम अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा कर सकें, है ना, थोड़ी सी मदद
1: जी
0: कर
1: जी
0: सकें।
1: मैम,
0: तो बहुत अच्छी चीज़ है आप जो कर रही हैं, घर में आप रह के इस तरीके से अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: जी मैं दिलवाले फिल्म है ना, उसका का कोई भी गीत मैं सुनना चाहती
0: दिल वाले फिल्म का कोई भी गीत सुनवा दें आपको, है ना?
1: हूँ। जी जी मैम,
0: चलिए, आपसे बात
1: थैंक
0: करके बहुत अच्छा लगा हमें, तो सुनाते हैं आपको
1: यू
0: आपके
1: मैम।
0: पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते। आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हम रेखा मुखर्जी वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद छाटरी से बोल रहे हैं।
0: तो बंगाल में सबसे ज्यादा देखने लायक क्या चीज है जो हम वहां पर आकर देख सकते हैं?
1: यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकते हैं जी।
0: जी बताइए।
1: यहाँ पर नवाब पैलेस है,
0: हाँ
1: रसगुल्ला भी है, यहाँ का मुर्शिदाबाद
0: हाँ
1: सिल्क भी विख्यात है,
0: अच्छा।
1: फेमस है, यहाँ का आम भी फेमस है,
0: अरे हाँ, मुर्शिदाबाद का आम और
1: फेमस
0: सिल्क।
1: है।
0: बहुत बहुत, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये बताइए कि आपको क्या करना चाहते, आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करती हैं?
1: हाँ हाँ जी, हम हाउस वाइफ है। हम लोग जो रेडियो में जो सुबह सकाल होता है ना,
0: हाँ
1: उसी
0: हाँ
1: में हम लोग मैसेज भेजते हैं। जब
0: अच्छा
1: हम लोग को लाइव फोन में जब नहीं मिलते हैं
0: हाँ
1: तो हम लोग मैसेज भेजते हैं, स्टोरी पोएम लिख के भेजते हैं।
0: अरे वाह, आप लिखती भी हैं, आपको लिखने का शौक
1: हाँ,
0: है?
1: लिखती भी है। इस बार
0: अच्छा
1: भी हम भेजे,
0: अच्छा अच्छा
1: घर में मेरा पेड़ पौधे लगाए लगी हुई है,
0: हाँ, अरे
1: और
0: वाह।
1: मेरा घर में बहुत सारी चीजें है, जो पेड़ ओड़ है फूल का, उसमें रात को रहते हैं, उन लोग को हम दाना देते हैं,
0: बहुत अच्छी बात
1: तीन
0: है।
1: टाइम उस सबको दाना देते हैं
0: अच्छा,
1: हम।
0: तो आप इस चीज को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, आप लिखते रहिए, अच्छी अच्छी कहानियां लिखिए, पोयम लिखिए,
1: हाँ
0: कविताएं
1: हाँ
0: लिखिए,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना? और बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का जू जू जू, जशोदा का नंदलाला, ब्रिज की उजाला है।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं आरती श्रीवास्तव। जरा ध्यान से सुनिए, ये फोन आपके संदेशों को हम तक पहुँचाने के लिए मीठी सी धुन सुना रहा है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले अपना नाम और फिर अपने शहर का।
1: आओ सुंदर शहर बनाए, डगर डगर पर वृक्ष लगाए।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या शुरुआत करी है आपने, बहुत अच्छी बात कही है, एक मैसेज दिया आपने ना।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: इंदौर से बोल रही हैं आप, हसीना मंसूरी। हाँ
1: जी जी
0: बहुत अच्छा लगा। बताइए कि आपको क्या पसंद है, मुझे लग रहा है ना आपको कई सारी चीजें पसंद होंगी करनी है ना। सबसे पहले तो आपको बातें करनी पसंद होंगी जहाँ तक मुझे लगता है।
1: जी बातें बहुत अच्छा करते हैं मैडम, और गाना भी सुनने का बहुत शौक है। रेडियो चलता रहता दिन भर, मतलब कम से कम 2002 से तो हम रेडियो रेगुलर सुन रहे, कभी मिस नहीं करते मैडम।
0: अच्छा।
1: और रेडियो मतलब खाना छोड़ देते हैं मगर फोन जरूर लगाते हैं।
0: तो आपको कौन से प्रोग्राम पसंद है सबसे ज्यादा?
1: सबसे ज्यादा तो ये हेलो सहेली है, और पहले तो सच्ची सहेली आता तो उसमें लेटर भी शामिल किया करते थे मैडम, तो अगर वो लेटर जैसा अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग समीक्षा भी लिखते थे उसमें, रिसेप्शन भी लिखते थे पहले, तो आप लोग बहुत शामिल भी करते थे, अच्छी अच्छी बातें लिखते थे हम लोग, तो कभी ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात रहेगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सब तक पहुंच रही है। तो बताइए और क्या क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है करना ये बताइए।
1: सिलाई करती है मैडम मैं अधिकतर, तो ज्यादातर तो, और घर में काम भी, छुट्टी होती है तो घर में काम करना भी अच्छा लगता है,
0: ये तो बहुत
1: साफ
0: जरूरी
1: सफाई
0: चीज है।
1: करना बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ तो ये बताइए आप क्या क्या सिल लेती हैं?
1: ये गनी पैक का काम करते हैं मैडम, जूट का होता है।
0: अच्छा, तो इसमें आप क्या मतलब क्या करना होता है, क्या बनाती हैं आप?
1: इसे मशीन से रिपेयरिंग होता है, नहीं होता मशीन से नहीं चलता तो फिर हाथ से रिपेयरिंग करते हैं मैडम,
0: अच्छा आप हाथ से भी कर लेती
1: रफो
0: हैं?
1: होता है। हाँ इसे रफो होता है मैडम।
0: अच्छा, तो बहुत ही मतलब आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। बताइए आपको और क्या करना अच्छा लगता है?
1: रेडियो सुनना
0: रेडियो।
1: अच्छा लगता है मैडम, आप लोगों से बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: कुछ गाना गाना नहीं अच्छा लगता आपको? आवाज से लग रहा मुझे
1: गाना
0: आपकी।
1: गाना अच्छा लगता है ना मैडम, गाके बताती हूँ।
0: देखा ना, मैंने आपकी आवाज से पहचान लिया।
1: जी, फिल्म
0: तो
1: का नाम है फूल और अंगार, और मेरी फरमाइश भी यही है, और गाने के बोलने, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। ये सुना दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से बोल रही हैं?
1: हेलो सही, हम बड़ागांव जिला विनाश चंचल ढाकड़ बोल रहे हैं।
0: आप क्या करती हैं?
1: मैं
0: आपके
1: 10th क्लास पढ़ती हूँ।
0: अच्छा 10th में आप पढ़ाई कर रही हैं, तो कौन से विषय से आप पढ़ाई कर रही हैं? आपको कौन सा विषय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: हमको सबसे अच्छा विज्ञान लगता है, मतलब
0: विज्ञान? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। और बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपके आपके शौक क्या है? जो आप पढ़ाई के बाद आपका जो समय बचता है तो उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मुझको, मतलब मेरा शौक ये है कि मैं आगे चलकर डॉक्टर बन जाऊं।
0: डॉक्टर बनना है आपको? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो कि आप लोगों की सेवा करना चाहती हैं, डॉक्टरी करना चाहती हैं। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनी सुनी सॉन्ग सुनना चाहते हैं सलमान खान का।
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ग्राम बरसी पोस्ट कर जिला चंदौली से इमरती यादव बोल रही हूँ। आप बोल रही हैं आरती श्रीवास्तव।
0: पहचान लिया आपने। तो सबसे पहले बताइए आप आपको क्या करना पसंद है?
1: मुझे मैं घर में रहती हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम करती हूँ। मैम रेडियो के प्रोग्राम में सुनती हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, तो प्रोग्राम सुनती हैं, तो आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद है?
1: सभी प्रोग्राम अच्छा लगता है, और खासकर हमें सखी सहेली सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग बातें करते हैं और हंसते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ, आपको बहुत अच्छी बात है, ये आपको सखी सहेली अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आप, जैसे कि आप गाने सुनती हैं, तो आपको कैसे क्लासिकल गाने ज्यादा पसंद हैं या फिर आज के समय
1: जी
0: के?
1: नहीं, हर तरह के गीत पसंद है, नए हो पुराने हो, भक्ति हो या हिंदी हो, मुझे हर तरह की चीज पसंद है। और रेडियो सुनना मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। रेडियो से जो हमें कहीं से
0: हाँ,
1: खुशी नहीं मिलती वो रेडियो से मिलती है।
0: ये तो सही बात है। अगर संगीत जो होता है ना, वो एक दूसरे से बांध देता है ना,
1: जी
0: और
1: मैम,
0: साथ ही हमारे सारी परेशानियों को थोड़ी समय के लिए सही लेकिन दूर कर देता है। और आप जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे संगीत पे बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम है जो रागों के ऊपर होते हैं, क्लासिकल
1: जी
0: संगीत
1: मैम,
0: के प्रोग्राम है, वो सब भी आप सुनती हैं?
1: जी मैं हर तरह के गीत पसंद है और गाते भी हैं थोड़ा सा रेडियो के साथ में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। गाना जब हम गाते हैं ना, तो सोचिए अपने
1: जी
0: अंदर के एकदम ऐसा लगता है ना कि हम अपने अंदर का भी जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे अंदर तनाव था, जो परेशानियां थी, वो खत्म हो रही हैं, धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, रिलैक्स हो जाते हैं ना
1: जी
0: एकदम, ऐसा लगता है ना।
1: जी अच्छा लगता है।
0: तो आपको जो गाना सुनना है ना, वो आप गा के सुना दीजिए। बता दीजिए हमें।
1: मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो वो टूट जाता है, वादा तो वो टूट जाता है।
0: बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते। आप बताइए कौन बोल रही है और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मेरा नाम नाजमीन है। मैं गांव हरपाल से बोल रही हूँ, जिला सारण के पास से। मैं
0: तो आप बताइए, आप पढ़ती हैं या कुछ जॉब करती हैं या घर में रहती हैं, क्या करती हैं आप?
1: घर में ही रहती हूँ, घर का ही काम करती हूँ। जी,
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। और ये बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: हमारे घर में अम्मी है, अब्बू है, दो बहने हैं, भाई है, सब है हमारे घर में।
0: अच्छा, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपके क्या शौक हैं?
1: मैं मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है,
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: और गाने के बोल उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में।
0: ओ ठीक है, तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही
1: जी, मैं मीनू अग्रवाल बोल रही हूँ, मथुरा से।
0: हैं? अच्छा, तो बताइए मीनू जी, आप क्या करते हैं? आपको क्या करना पसंद है?
1: मैं घर में भी रहती हूँ और मैं घर पे ट्यूशन लेती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बाकी का मेरा मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो जैसे कि पेंटिंग है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ
1: और सबसे ज्यादा कुकिंग में है।

0: इंटरेस्ट।
1: अरे वाह, बहुत
0: तो
1: अच्छी
0: मुझे
1: बात है।
0: हाँ तरह तरह का खाना बनाना अच्छा लगता है
1: कौन कौन सी तरीके के खाना बना लेती हैं आप?
0: जी। मैं वैसे तो अपना यही इंडियन फूड ही ज्यादा बनाती हूँ, और बाकी का हाँ बाकी का ये है कि और भी चीजें मेरे पे आती हैं, जैसे साउथ इंडियन डोसा, इडली, सांभर वगैरह ये सब
1: अरे
0: चीजें।
1: वाह, क्या बात कर रहे हैं आप, इतनी तरीके की चीजें आप बना लेती हैं घर में।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: तब तो आपके फैमिली, आपके जो परिवार हैं, सब लोग आपसे बहुत खुश रहते होंगे, है ना? आप बना बना के
0: हाँ
1: अच्छी अच्छी
0: जी
1: चीजें खिलाती
0: कहते
1: होंगी।
0: हैं ना, हाँ जी कहते हैं ना कि इंसान की जो पहली पसंद होती है ना घर में, जो मेंबर्स होते हैं उनकी पहली पसंद होती है खाना। अगर उनको खाना हमने अच्छा दे दिया ना बना के, तो बस। मैंने अभी बताया था पेंटिंग कुकिंग वगैरह है, तो मैं
1: हाँ,
0: पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ
1: अरे वाह,
0: और सेल भी होती है, ऐसी बात नहीं है मेरी पेंटिंग्स वगैरह।
1: बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ड्राइंग कर लेती हैं, आप पेंटिंग बनाती हैं, आप खाने तरह तरीके की बना लेती हैं,
0: हाँ
1: बहुत अच्छी
0: जी
1: बात है ये तो। और आप ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीजें बनाइए, और किसी दिन हमें भी आप बुलाइए, ताकि हम भी आए और आपने जो बताई है चीजें उनका हम भी कुछ लुत्फ उठा सके।
0: अरे
1: क्योंकि बहुत
0: बिल्कुल।
1: अच्छी चीज है, आपको तरह तरह की चीजें करनी आती हैं। तो बताइए मीनू जी, आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
0: जी मैं दो कलिया मूवी का गाना सुनना पसंद करूंगी, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई।
1: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गीत है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी, चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867-0288 और

0: मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई, वो बिल्कुल भी निराश नहीं हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी कामयाब जरूर होते हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था, उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीनों तक कॉल न लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले जी का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी है नम्रता टिकोले। और विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कार्यक्रम गीतों भरी कहानी बस थोड़ी ही देर के बाद।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्याम महेश्वरी की कहानी भाई हो तो ऐसा। वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का।
2: अज्जू विज्जू की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती। परिवार में कहीं भी कुछ भी काम हो, जन्म मरण, शादी ब्याह, दोनों भाई लगकर काम करते। अज्जू माने अजय बड़ा भाई और विज्जू माने विजय छोटा भाई। 8 साल का अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की पटती बहुत। पटने का कारण था बड़े भैया अजय। विज्जू का बड़ा ध्यान रखते और विज्जू बड़े भैया को भगवान मानता। माने भी क्यों ना, पिक्चर जाना हो, वो भगत जी की रबड़ी जलेबी खाना हो या कुछ और, बड़े भैया अज्जू ही बंदोबस्त लगाते। विज्जू को पिताजी से बड़ा डर लगता, लेकिन अज्जू भैया में कुछ बात थी, पिताजी उनकी बात मान ही जाते। दोनों के बीच में दो बहनें, वो बड़ी वाली बड़े भैया की चमची और छोटी वाली विज्जू की सहेली।

उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला, यदि विजय 6 मासी परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासी परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहां से और कैसे ले आए।

0: विजय, परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुंचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लोट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामाटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई, वो फिर हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाकये को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता पे।
1: तेरे

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे, 4-5 तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विज्जू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विज्जू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विज्जू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विज्जू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विज्जू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विज्जू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय

आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले, दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विज्जू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया, मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहां जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। बिज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन बिज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने बिज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। बिज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और बिज्जू से कहते, कूद जा मैं खड़ा हूं तुझे संभाल लूंगा। और बिज्जू कूद जाता। बिज्जू हाथ पैर मार के

तक पहुंचता तो वो और पीछे चले जाते। और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी। भैया के भावों से विज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हो तो चिंता मत कर, मैं हूं ना।

बड़े भैया की शादी की बात चल निकली। उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे स्मार्ट, दुल्हन अच्छी मिली, मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं लेकिन शांत स्वभाव की दिखी। हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहां तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विजू को आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानीपुरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाच नाच के काम किया विजू ने शादी में। विजू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विजू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी, मेरी भाभी।

0: विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और विज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया शादी के बाद। विज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी विज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी माँ और भाभी की पट्टी नहीं थी, वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। विज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। विज्जू के लिए ये सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो विज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। विज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे। टिमटिमाती चमक लिए विज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा।
1: झूठ

0: सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3 लाख से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशन्स के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।
1: आप सुन रहे हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे AISSMS पुणे।
2: अच्छा काम जमा लिया उसने, कालचक्र का पहिया भी अजीब है। बात कुछ ऐसी बैठी कि बड़े भैया का भी वहां काम जोरदार चल निकला और उससे भी बड़ी बात, उन्हें हर सप्ताह मुंबई आना पड़ता अपने काम के सिलसिले में। मुंबई में आकर विज्जू के घर ही रहते हर हफ्ते 4-5 दिन। विज्जू को लगा तो यही था कि अपने गांव से दूर इस पराये शहर में भी भैया के आ जाने की वजह से वही अपनापन फिर लौट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया तनाव में ही दिखते हमेशा। पैसा आता है तो बरकत आ जाती है, लेकिन भैया के साथ उलट हुआ। भाभी का शांत स्वभाव सुना है अब ज्वालामुखी हो गया है। दोनों दीदियां बताती हैं अब वहां भाभी का ही राज चलता है। मम्मी पलंग पर आ लगी है और पिताजी को भगवान के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया है

सालों साल निकल गए इस आपाधापी में। ये शहर अब बंबई से मुंबई हो गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो विजय सही सलामत रहा, लेकिन कोई पिक्चर बनाई उसने जिसमें कमर टूट गई उसकी। नौबत यहां तक आ गई कि विज्जू का घर बिक गया। और उधर गांव में सुना बड़े भैया ने बहुत पैसा जमा कर लिया था। मुंबई आने की अब जरूरत भी खत्म हो गई थी, इसलिए वे नहीं के बराबर ही आते, और आते भी तो विज्जू के घर नहीं रुकते, वो कहीं किसी होटल में रुकते थे। आजकल विज्जू को उनके हाव भाव व्यवहार से समझ आ रहा था कि उन्होंने इसलिए मुंबई आना बंद नहीं किया था कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई थी, बल्कि इसलिए बंद किया था कि भैया अब विज्जू से मिलने से कतरा रहे थे। उन्हें शायद ये डर सता रहा हो कि विज्जू इतने सालों मुंबई में रखने की कीमत न मांग बैठे। कठिन समय में अपने ही याद आते हैं, और वो अजय भैया जैसे अपने हों तो ज़्यादा याद आते हैं।

विजय अभी भी अपने तो अपने होते हैं कि भावों से निकल नहीं पाया था पूरी तरह, लेकिन भैया ने तयशुदा पूरी तरह भुला दिया था बिज्जू को। चलो उसे भुला देते तो भी ठीक था, लेकिन इस वक्त जरूरत में था वो। यही सोचकर मेहरबानी समझ ही मदद का हाथ बढ़ा देते उसकी तरफ, पर ऐसा हुआ नहीं। तब विजय को याद आई अपने दादाजी की जमीन, वही जो दादाजी ने अजय और विजय के नाम कर दी थी और जिन कागजातों पर तब हस्ताक्षर करवाए थे विजय से, वो इसी जमीन को बेचने के कागजात थे। और उसी जमीन को बेच के भैया ने कपड़े की दुकान ली थी अपनी, जिसने आज यहां तक पहुंचा दिया उन्हें। सुना है कुछ लाखों में बेची वो जमीन आज करोड़ों की हो गई है। नंगे के नवग्रह बलवान, विजय ने सोचा और तय किया कि उस जमीन का अपना हिस्सा भैया से अब मांग लेगा। उनके पास बहुत है ही और इसके पास सब खत्म हो गया है, सो ये सही समय है अपनी हक की गुहार लगाने का।

भैया से बात की विज्जू ने तो वे साफ मुकर गए। तर्क ये कि उस जमीन को बेचना तो छोटी सी बात थी, मेन बात तो यह थी कि उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज ये मिल्कियत खड़ी हो पाई। तर्क नहीं कुतर्क था ये। विजय की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने सालों उन पैसों को भोगने के बाद वो अपने ही हो जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है उन पैसों पर से अपना मोह जाने देना। पैसों का चरित्र कुछ ऐसा ही है, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। रुआब और रुतबा तो बढ़ता है लेकिन घमंड और लालच भी बढ़ जाता है। पैसों के शुद्धिकरण के लिए बड़ा दान धर्म करना पड़ता है, तब पछता है पैसा। भैया छोटे भाई को उसके हक का छोड़ो उसकी जरूरत का नहीं दे पा रहे थे तो दान धर्म कहां से करते? कहां से चले थे अज्जू भैया, कहां पहुंच गए? और कहां से चला था रिश्ता, कहां पहुंच गए?

विजय ने खूब गुहार लगाई अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाकर। अपने हक का गान बखान किया, लेकिन भैया के खिलाफ कौन खड़ा होता। समरथ को नहीं दोष गोसाई, पैसे वालों की कहां कभी कोई गलती होती है। विजय को अपना हक नहीं मिलना उतना नहीं चुभ रहा था जितना उस भरोसे का टूटना जो उसने भैया पे दिखाया था। जान लुटाता था वो बड़े भैया पे। कोई अभी भी कह दे कि ये सब झूठ है, अभी भी बड़े भैया आएंगे सांता बन के उसको सरप्राइज गिफ्ट देने, पर वो नहीं आए। विजय के इतने साल जीवन का अहम हिस्सा झूठा साबित हो गया। अब वो किसी पे भी भरोसा कैसे करेगा, और दूसरों पर तो जाने दीजिए, खुद पर भी भरोसा कैसे करेगा।

0: नाड़ी।
1: आज विजय बेघर है, दिन भर बैठा रोता रहता है, रातों को सो नहीं पाता। इधर गरीबी की मार और उधर विश्वास का खंजर, शूल सी चुभन हिस्सा बन गई है जीवन का। कलयुग की ये घटना कितनों के ही साथ हुई है। संवेदनशील विजय कई तरीकों से अपने आप को संभालने का प्रयास करता रहा। प्रयास करते रहने की एक विशेषता है, मुश्किलों से जूझने के लिए हिम्मत मिलती रहती है। प्रयासों की खुराक सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दिया उसने दवाई की तरह, कहीं ज्ञान की बात सुनता तो कहीं ध्यान की कोई क्रिया करता। ऐसे ही एक ज्ञान में ये समझ आया कि पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बचा रहा होगा बड़े भैया से, जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस ज्ञान ने उसे हौसला दिया और नतीजा भी तुरंत निकला। विजय का बेटा अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर आया, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा गया और सबसे महत्वपूर्ण, विजय के प्रति पूरा समर्पित। कलयुगी भाई गया तो सतयुगी बेटा आ गया। कुछ जाता है तो कुछ आता भी है, अभी रात है तो कल सवेरा होगा ही। जीवन के इस हिसाब किताब को समझने के बाद आज विजय शांत है। एक रिश्ते के सामने जीवन का ज्ञान पा जाना उसे भगवान का दिया उत्तम न्याय लगा। आज विजय भैया के लिए नरम हो चुका है। कल तक ये सोचने वाला विजय कि भाई हो तो ऐसा ना हो कि जगह सोच रहा है, भाई हो तो ऐसा।

भाई हो तो ऐसा ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे श्याम महेश्वरी, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब आप अयाज अहमद से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में तैयार करदा पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाई और हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन समेत 75 जदीद रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मरकजी काबीना की जानिब से सेमीकॉन 2 स्कीम और मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की मंजूरी का खैर मकदम किया। तेलंगाना में नई मुलाजमीन सेहत स्कीम का आगाज़ किया गया। इस स्कीम से 8 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन को कैशलेस तिबी इलाज की सहूलत रहेगी। रियासती इलेक्शन कमिश्नर सुदर्शन रेड्डी ने ऐलान किया कि रियासत भर में SIR अमल की डिजिटाइजेशन का 60% काम मुकम्मल हो चुका है। PV सिंधु जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर हिंदुस्तान की पहली मुकामी तौर पर तैयार करदा हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस इकदाम के साथ हिंदुस्तान उन चंद ममालिक में शामिल हो गया है जो सिफर अखराज वाली इस जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 कोचों पर मुश्तमिल ये ट्रेन 3,200 हॉर्स पावर की सलाहियत रखती है और पायदार ट्रांसपोर्ट के मैदान में एक अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने 12,470 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत के कौमी शाहराह मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा, जिनमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा भी शामिल है।
1: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: इस मौके पर मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हरियाणा के रेलवे बजट में नुमाया इजाफा हुआ है और हुकूमत रेलवे की जदीद कारी के साथ साथ मुस्तकबिल में कालका शिमला जैसे हेरिटेज रेलवे रास्तों के फरोख पर भी गौर कर रही है। वजीर आजम

मोदी ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मुल्क भर में जदीद बनाए गए 75 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल इफ्तिताह किया, जिनमें हैदराबाद का हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जिसे 26 करोड़ रुपए की लागत से जदीद बनाया गया है। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव और साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद थे। रामचंद्र राव ने कहा कि तेलंगाना में रेलवे बुनियादी ढांचे को फ़रोग देने के लिए 4,900 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं, जबकि हैदराबाद के लिए 3 बुलेट ट्रेनें चलाने का मनसूबा भी ज़ेरे गौर है। जनरल मैनेजर ने बताया कि जदीद बनाए गए स्टेशन में नए फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट्स और इंतज़ारगाहें कायम की गई हैं, जबकि रियासत के मज़ीद 40 रेलवे स्टेशनों की अपग्रेडेशन का काम तेज़ी से जारी है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने सिरसिला में अमृत 2 स्कीम के तहत 105 करोड़ रुपए की लागत से कारगिल झील की बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो 15वीं मालियाती कमीशन के तरक्याती फंड्स को बिजली के बिलों और तनख्वाहों की अदायगी के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो वो मरकज़ से मुतालबा करेंगे कि फंड्स बराह रास्त ग्राम पंचायतों को मुंतकिल किए जाएं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की का बड़ा हिस्सा मरकजी फंड्स पर मुनहसर है और अमृत मंसूबों में मज़ीद ताखीर की सूरत में ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मरकजी काबिना की जानिब से सेमिकॉन 2 स्कीम और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की मंजूरी का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इन मंसूबों का मकसद हिंदुस्तान को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में आलमी मरकज बनाना है। उन्होंने बताया कि सेमिकॉन 1 के तहत तेलंगाना में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के लिए 724 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जबकि IIT हैदराबाद समेत रियासत के 27 इदारों में चिप डिज़ाइनिंग को फ़रोग दिया गया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर जोर दिया कि वो इन नई स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और तहकीकी मराकज़ को रियासत में रागिब करे, ताकि नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर रोज़गार और स्टार्टअप्स के मौके पैदा हों। ये खबरें आप आकाशवाणी हैदराबाद से सुन रहे हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सेक्रेटेरिएट में नए मुलाज़मीन सेहत स्कीम का आगाज़ किया। इस मौके पर स्कीम का वेब पोर्टल, डिजिटल हेल्थ कार्ड्स और ट्रस्ट डीड भी जारी किया गया। इस स्कीम के तहत सरकारी मुलाज़मीन वजीफा याबों और उनके अफराद ख़ानदान समेत 17,88,000 इस्तीफादा कुनंदगान को बग़ैर किसी दुश्वारी के कैशलेस तिबी सहूलतें फराहम की जाएंगी। इसमें 1,816 तिबी पैकेजेस शामिल हैं, जिनकी सहूलत 114 सरकारी और 886 खानगी अस्पतालों बशमूल कॉरपोरेट अस्पतालों में दस्तियाब होगी। ये स्कीम एम्प्लॉयज़ हेल्थ केयर ट्रस्ट के तहत शफाफ अंदाज में चलाई जाएगी और इसकी माली एयानत हुकूमत और मुलाजमीन मुश्तरका तौर पर करेंगे। वज़ीर सेहत ने यह भी ऐलान किया कि बैरूनी मरीजों की खिदमात को वसत देने के लिए मज़ीद 24 वेलनेस सेंटर्स क़ायम किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मौजूदा हुकूमत साबिक हुकूमत के दौर से वाजिबुल अदा 10,000 करोड़ रुपए के बकाया बिलों की अदायगी भी कर रही है। सेवालाल भवन में मुनाक़िदा एक तकरीब में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर मेहनत गडम विवेक वेंकट स्वामी ने नए मुंतखब होने वाले 247 नर्सिंग अफसरान में तकर्रुनामे तकसीम किए। नायब वज़ीर आला ने कहा कि सेहत और तालीम पर खर्च फलाही अखराजात नहीं बल्कि इंसानी वसाइल में सरमायाकारी है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने अब तक 76,000 सरकारी मुलाजिमतें फराहम की हैं। तिबी बुनियादी ढांचे को वसत देते हुए बिस्तरों की तादाद 44,029 तक पहुँचाई है, जबकि नए मेडिकल, नर्सिंग और स्किल यूनिवर्सिटियाँ भी क़ायम की गई हैं। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने रियासत भर में ट्रैफिक क़वानीन पर मौसर अमल दरामद को मज़ीद मजबूत बनाने और खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है।
रियासती इलेक्शन कमिश्नर सुदर्शन रेड्डी ने ऐलान किया कि रियासत भर में SIR अमल की डिजिटाइजेशन का 60% काम मुकम्मल हो चुका है।

उन्होंने संगारेड्डी जिले के कलेक्टर प्रतीक जैन के हमरा पटनचेर असम्बली हलके में बूथ लेवल अफसरान की जानिब से कायम मुख्तलिफ मराकज़ का मुआयना किया और पेशरफ्त का जायजा लिया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मुंतखब तलबा में मेरिट कम मीन्स इस्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद हुई। अमरीका में कायम तंजीम सीड ने पब्लिक केयर ट्रस्ट के तआवुन से इस साल 80 तलबा के लिए इस इस्कॉलरशिप प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने तलबा को अपनी तालीमी सरगर्मियों पर भरपूर तवज्जो देने की तलखीन की, जबकि सीड ने इस्कॉलरशिप की पहली किस्त के तौर पर 25 लाख रुपए जारी किए। ओलंपिक में दो मरतबा मेडल जीतने वाले हिंदुस्तानी शटलर पीवी सिंधु जापान ओपन 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की साबिक आलमी चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के मुकाबले से दस्तबरदार होने के बाद सिंधु को फ़ायदा मिला है। आलमी दर्जेबंदी में 10वें नंबर पर मौजूद सिंधु अब सेमीफाइनल में चीन की आलमी नंबर 4 खिलाड़ी चेन योफे का सामना करेंगी। आखिर में बुलेटिन की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में तैयार करदा पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाई और हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन समेत 75 जदीद रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने काबीना की जानिब से सेमीकॉन 2 स्कीम और मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की मंजूरी का खैर मकदम किया। तेलंगाना में नई मुलाजिमीन सेहत स्कीम का आगाज़ किया गया। इस स्कीम से सरकारी मुलाजिमीन को कैशलेस तिबी इलाज की सहूलत रहेगी। रियासती इलेक्शन कमिश्नर सुदर्शन रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत भर में SIR अमल की डिजिटाइजेशन का 60% काम मुकम्मल हो चुका है और पीवी सिंधु जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। आकाशवाणी हैदराबाद से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली

0: राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारत की टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी विविध भारती केंद्रम इप्पुडु विनंडि अनगनगा ओक राजु चित्रं कोसं नवीन पोलिशेट्टी नूतन मोहन पाडिन पाट।

हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। हर रोज की तरह, हर दिन की तरह, आज भी मैं आ गया आपके लिए कुछ नया लेकर। हम हर रोज एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और ये टॉपिक हमारे फिटनेस, लाइफस्टाइल, हेल्थ, जैसे कि मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ, इससे जुड़ी होती है। ये टॉपिक्स को हम एक्सपर्ट्स से लेते हैं, उनकी राय लेते हैं, हमारा टीम बैठकर इसके बारे में डिस्कस करता है। बाद में सोच विचार के बाद, एक्सपर्ट्स के राय के बाद, एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए तैयार की जाती है और उसके बाद पेश किया जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आप केयरफुली हमारी बातों को सुनिए, ये बेहद जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स एज केयर गिवर्स। आमतौर पर दादा दादी और नाना नानी के पुराने किस्से सुनना आपने कई बार देखा होगा। अपने आप में काफी मजेदार अनुभव होता है ये। हालांकि आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, लेकिन क्या आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के फायदे जानते हैं? क्या उससे वाकिफ है? क्या आप बता दें कि उनके साथ टाइम स्पेंड करे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज के दौर में खेल, पढ़ाई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में व्यस्त रहने के कारण बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है। वही कुछ बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना जुलना ही बड़ी मुश्किल से होता है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मददगार हो सकता है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के कुछ फायदे आज के लम्हे प्रोग्राम में आपका आरजे चेतन से। आजकल के ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल में सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहने वाले बच्चे अमूमन अन्य लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वही ग्रैंड पेरेंट्स के होने से बच्चे न सिर्फ उनके साथ समय बिताते हैं बल्कि उनकी बात भी मानते हैं। साथ ही छुट्टियों में ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने से बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी घुलते मिलते हैं और सोशल लाइफ को खुलकर एंजॉय कर पाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से बच्चे बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अक्सर बच्चों की नादानियों को माफ करके उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, जिससे बच्चों की सहनशीलता में इजाफा होता है। साथ ही ग्रैंड पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान की भावना से देखते हैं और उनकी सलाह को नजरअंदाज नहीं करते हैं। नाना नानी, दादा दादी के साथ या जॉइंट फैमिली में रहने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, उनको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। ऐसे में बच्चे हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करता है। साथ ही मुश्किलों से डरने से बजाय उनका डटकर सामना करने की यकीन रखता है। इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से बच्चों में समर्पण और सहयोग की भावना भी पैदा होती है।

छोटे बच्चों के लिए दादा दादी बेहद जरूरी होते हैं। जो बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के पास रहते हैं वह अन्य बच्चों से ज्यादा खुश और स्वस्थ रहते हैं। दादा दादी अपने बच्चों को हर तरह से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। केवल ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को पुरानी संस्कृति मान्यता परंपरा से जोड़ सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों में अच्छी आदतों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। बच्चे उन्हीं के द्वारा ही नैतिक गुणों को जानते हैं और ये भी समझते हैं कि नैतिक गुणों की जिंदगी में कितनी अहमियत होती है। इसके अलावा भी ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए जानते हैं कौन सी है वो कारण जिनकी वजह से बच्चों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स जरूरी होती है। सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। जब बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं वह अपने पूरे परिवार यह तक के दादा दादी के रिश्तेदारों को भी जान जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को पुराने संस्कृति मान्यता ये सब तो सिखाई देते हैं। हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उनके बच्चों में नैतिक गुण जरूर हो। ये नैतिक गुण ही जीवन को जीने का तरीका बदल सकता है। इसीलिए नैतिक शिक्षा के लिए ग्रैंड पेरेंट्स एक अच्छा विकल्प है। अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर उनके अंदर नैतिक गुण लाने में बेहद सहायक है। हर बच्चा बड़े बुजुर्गों से कुछ न कुछ जरूर सीखता है। ये पाया गया है कि बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना बेहद पसंद होता है। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें कभी प्यार की कमी महसूस ही नहीं होती है और वह हमेशा खुश रहते हैं। उन्हीं से बच्चों की सुरक्षा की भावना भी एहसास होता है। उनके द्वारा दिया गया प्यार ही उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब भावनात्मक या व्यवहार संबंधी परेशानियां उनके सामने खड़ी हो जाती है तो इस स्थिति में वह बेहतर तरीके से समस्या से निपटते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर अपने दादा दादी के और नाना नानी के प्रति स्नेह और आदर की भावना ज्यादा होती है, जिससे वह भावनात्मक रूप से स्थिर होने लगते हैं और दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं वे अकेलापन, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से कम पीड़ित होते हैं। दादा दादी या नाना नानी हमारे बच्चों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बच्चों के पेरेंट्स उनकी कोई जिद पूरी नहीं करते हैं, ऐसे में ग्रैंड पेरेंट्स उनकी इच्छा पूरी कर उनको खुशी देते हैं। लेकिन कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स के अधिक प्यार की वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स को अनसुना करने लगते हैं, उनका कहना नहीं मानते, जिससे दो पीढ़ियों के बीच गलत फैमिली बनने लगती है। इसीलिए ग्रैंड पेरेंट्स को चाहिए कि वो ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अपने प्यार को बैलेंस रखे और बच्चों के साथ ये बात करने से बचे। पेरेंट्स कुछ कारणों से अपने बच्चों को कुछ चीजों को खाने से मना करते हैं, जबकि वही दूसरी तरफ ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों की बात को इग्नोर करते हुए अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जिद पूरी करते हैं। ऐसा करना जहां उनके नाती पोतों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, वही ऐसा सपोर्ट उनको जिद्दी भी बना सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों में कुछ सुधार की कोशिश में उनको पनिश करने के वजह से उनकी विश पूरी नहीं करते। कभी कभी पेरेंट्स बच्चों को उनकी पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स लाने तक उनको कोई नए टॉयस और गेम नहीं दिलाते, जबकि इसके विपरीत ग्रेड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की विश पूरी कर देते हैं, जिससे बच्चों में बिना प्रयास के चीजों को पाने की आदत बन जाती है। इन कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप अपने बच्चों और बच्चों के साथ अपने रिश्ते को भरपूर जी सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। विद दिस वी कंक्लूड आवर प्रोग्राम फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ लर्न है। अंटिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय फ्रॉम योर आरजे चेतन। Call or messages on 0951522703 9, that's 0951522703 9, or write to us at feedbackamc1@gmail.com, that's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media handle spice.lamhe.vanilla, that's spice.lamhe.vanilla. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीर आजम ने जिंद से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर आजम ने कहा कि मरकज नागरिक देवोभव के जज्बे के साथ हर शहरी के लिए जिंदगी गुजारने में आसानी और नए मौके फराहम करने के तई अहदबंद है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इतवार से मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। नीति आयोग ने सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया है। गुजरात आला तरीन कारकर्दगी करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। मायानाज वेस्ट इंडीज क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स का इंतकाल हो गया है। और भारत ने अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड में मुनक्द होने वाले FIH खवातीन के हॉकी आलमी कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, मुसाफिर सहूलतों में इजाफा करना और खित्ते में माशी तरक्की को फरोग देना है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज शाम जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ रेल और सड़क बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने तजीन नौ किए गए 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनमें अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जालंधर कैंट स्टेशन भी शामिल है। जालंधर में आवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत के हर शहरी की खिदमत करना, उनकी जिंदगियों को आसान बनाना और उन्हें तरक्की के नए मौके फराहम करना मरकज की NDA हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि ये NDA हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हर कुंबा, चाहे वो गरीब हो या मुतवसित तबके से ताल्लुक रखता हो, उसे बेहतर से बेहतर सहूलतें मिलें और हुकूमत के कामकाज में नागरिक देवोभव के जज्बे की अक्कासी हो।
1: हम नागरिक देवोभव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवोभव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: वजीर आजम ने कहा कि ये रेलवे स्टेशन सभी जदीद सहूलतों से लैस हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन स्टेशनों की कायापलट का प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन तजीनेनो प्रोग्राम अमृत भारत स्टेशन स्कीम का हिस्सा है।
1: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: वजीर आजम ने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेलवे और इत्तेलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और दीगर सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। वजीर आजम मोदी ने दिल्ली अमृतसर कटरा 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे और 6 लेन वाले जुनूबी लुधियाना ग्रीन फील्ड बाईपास की तरक्की का संगे बुनियाद रखने जैसे कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज पार्लियामेंट की सभी सियासी जमातों के ऐवान के रहनुमाओं की

विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार। आज बातें एक ऐसी अदाकारा और गायिका की जिन्होंने अपने आगमन से ही फिल्मी दुनिया में मचा दी थी हलचल। उनकी आवाज के सभी थे इतने कायल कि हर गाना होता था सुपरहिट। पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में तब कदम रखा था जब फिल्में होती थीं बेआवाज। उन्होंने जीता दिल क्योंकि था उनका अलग ही अंदाज। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज बातें होंगी अभिनेत्री और गायिका कानन देवी की।

कानन देवी एक अदाकारा और गायिका ही नहीं थी, बल्कि वो तो फिल्मी दुनिया में महिलाओं के लिए एक पहल बनकर आई, क्योंकि ये वो दौर था जब तथाकथित सभ्य समाज की महिलाओं का फिल्मी दुनिया में आना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। कानन देवी आगे चलकर भी फिल्मी दुनिया में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में अग्रणी रही और कई काम भी उन्होंने इसके लिए किए, लेकिन वो बातें बाद में। अभी पहले सुन लेते हैं कानन देवी की वो आवाज़ जिसने अपने नाम कर ली थी लाखों दिलों की धड़कन।

शिवानंद देवी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मात्र 10 साल की उम्र से ही कर ली। वो दौर मूक फिल्मों का था। मूक फिल्मों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने बोलने वाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो बांग्ला की पहली स्टार कही जाती रही हैं। पहली फिल्म 1926 में आई, जिसका नाम था जयदेव। बोलने वाली फिल्मों के दौर में कानन देवी

तकरीबन 4 दशकों तक कानन देवी फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहीं। मूक फिल्मों से उन्होंने बांग्ला फिल्मों की ओर अपने करियर को आगे बढ़ाया। वो कई बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ फिल्में करती रहीं। वो दौर ऐसा था जब अभिनेता अभिनेत्री फिल्म थिएटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम किया करते थे, जिसमें उनका प्रति महीने का एक निश्चित वेतन तय किया जाता था और इसके बदले एक निश्चित समय के लिए अभिनेता अभिनेत्री उनके अलावा किसी और के साथ काम नहीं किया करते थे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कानन देवी ने उस समय कोलकाता के मशहूर फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर के साथ करार किया। इसके पहले और बाद में भी अन्य कई बैनर्स के साथ वो करार में रहीं, जैसे मदन थिएटर, ज्योति थिएटर, राधा थिएटर आदि। उन्हें इस दौर की अभिनेत्रियों से ज्यादा मेहनताना भी दिया जाता था, क्योंकि कानन देवी के अभिनय के साथ साथ उनके गीत सफलता के अलग पायदान छुआ करते।

0: चलो मतवाले, झूम रही है आली, अम्मा की डाली झूम रही है आली।
1: यहाँ कानन देवी के सफलता के किस्से सुनकर हम उनके कायल हो रहे हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उन्होंने सफलता के शिखर को छूने के लिए कड़ी मेहनत से काम लिया। 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जन्मी कानन देवी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता के व्यसन की आदत के कारण पहले गरीबी का सामना करना पड़ा और बाद में पिता के गुजर जाने के बाद नन्ही कानन देवी पर बचपन से ही माँ और स्वयं के जीवन यापन का बोझ भी आ गया। यहीं से शुरुआत हुई उनके अभिनय जीवन की।

अपने छोटी सी उम्र से ही फिल्मी पर्दे पर मूक फिल्मों में काम की शुरुआत करने के कारण कानन देवी ने तो ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है, जिसमें उस दौर में फिल्मी दुनिया में आई महिलाओं की स्थिति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने बेबाक अंदाज में अपने कई सह अभिनेताओं की असुरक्षा की भावना का भी उल्लेख किया है। कानन देवी उन पहली अभिनेत्रियों में से एक रहीं जिन्होंने हिट फिल्मों के फायदे में एक हिस्से की बात निर्माता निर्देशकों के सामने रखी। उनकी आत्मकथा शोबेर आमी नोमी यानी सभी को मेरा नमन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी बात रखने में निडर थीं।

नानन देवी अपने अभिनय जीवन में एक लंबे समय तक बांग्ला फिल्मों में सक्रिय रहीं। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मी दुनिया का रुख किया। ये उनके जीवन का वो समय भी रहा जब उन्होंने खुद को हर करार से मुक्त करके अलग अलग निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में काम करने का साहस किया। आगे चलकर कानन देवी ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और अपना एक बैनर शुरू किया जिसका नाम रखा श्रीमती पिक्चर्स।

कानन देवी की कई फिल्में बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ बनी और दोनों ही इंडस्ट्री में हिट भी रहीं। उनके कुछ ऐसी ही फिल्मों में शामिल हैं विद्यापति, मुक्ति, स्ट्रीट सिंगर, लगन, सपेरा, जवाब और अनन्य। कानन बाला के नाम से फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे उन्हें कानन देवी का नाम मिल गया और वो इसी नाम से मशहूर हैं। कानन देवी उस जमाने के तकरीबन सभी मशहूर सितारों के साथ फिल्मों में नजर आईं। इनमें नाम शामिल हैं कुंदनलाल सहगल, पंकज मलिक, पहाड़ी सान्याल, छवि बिस्वास, पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर, अशोक कुमार और न्यू थिएटर के मालिक प्रथमेश चंद्र बरुआ, जिनके साथ उनकी कई फिल्में आईं।

कानन देवी संगीत से पहले ही जुड़ी हुई थीं और उनकी आवाज़ भी लोगों के दिलों तक पहुंचा करती थी। लेकिन उनके संगीत जीवन में एक मोड़ तब आया जब वो मिली संगीत के जादूगर रायचंद बोराल से। आरसी बोराल ने कानन देवी को हिंदी की बारीकियां भी सिखाई और उन्हें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत और भारतीय संगीत सीखने के लिए भी प्रेरित किया। कानन देवी ने उस्ताद अल्लाह रखा से संगीत की तालीम ली। उनकी आवाज में अब मधुरता के साथ साथ रियाज का जादू भी नजर आने लगा। बात जब कानन देवी के गायन की हो रही है तो यहाँ जवाब फिल्म में उनका गाया वो गीत याद आता है जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। तो चलिए सुनते हैं वो गीत।

कानन देवी की आवाज में ये इकलौता ऐसा गीत नहीं है जिसे चाहने वालों ने रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने ये काम इसके बाद भी कई बार किया। एक समय आया जब कानन देवी को अभिनय से अलग एक गायिका के रूप में सम्मान मिला, और ये वो समय था जब मेगाफोन ग्रामोफोन ने एक गायिका के रूप में उन्हें रिकॉर्ड्स के लिए अनुबंधित किया। सफलता एक ओर लोगों के मन में घमंड भी ले आती है, लेकिन कानन देवी ऐसी नहीं थी। मौका मिला तो उन्होंने इसे जिम्मेदारी समझी और तैयारी के लिए उन्होंने भीमसेन चटर्जी और आनंदी दस्तीदार से संगीत की तालीम ली। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब कानन देवी को उस दौर में उनके गीतों के रिकॉर्ड्स की बिक्री के कारण हर 3 महीने में रॉयल्टी के 25,000 रुपए मिलते थे।

कानन देवी एक ओर जहां लगातार सफलता हासिल कर रही थीं, वहीं वो फिल्मी दुनिया और समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी लगातार विचार कर रही थीं। उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने वाली वृद्ध अभिनेत्रियों के भरण पोषण के लिए महिला शिल्पी महल नामक संस्था की स्थापना की और उसे अपने खर्च पर लंबे समय तक चलाती रहीं। उन्होंने अपने काम में खुद को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी के साथ साथ संस्कृत साहित्य की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, अंग्रेजी सीखना, विदेश में जाकर फिल्मों से जुड़े कई विषयों की शिक्षा भी ली। ये बताता है कि वो केवल सफलता के पायदान ही नहीं चढ़ रही थीं, बल्कि अपने निजी उत्थान और खुद को तराशने की दिशा में भी काम कर रही थीं, जिसका असर भी पूरी तरह नजर आ रहा था।

कानन देवी ने अपने जीवन में जब भी ये महसूस किया कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ तो उन्होंने उस ओर कोई न कोई ऐसा निर्णय भी लिया जिससे आगे आने वाली अभिनेत्रियों के सामने एक मिसाल कायम हुई। जैसे कि उन्होंने जब फिल्मी दुनिया में अभिनेताओं के समान मेहनत आने की बात की तो उन्हें मना कर दिया गया। ये बात उन्हें नागवार गुजरी और उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना काम करने की ठान ली। उनका ये कदम उनके सशक्त व्यक्तित्व को दर्शाता है।

अपनी खूबसूरती, अदाकारी और गीतों के लिए मशहूर कानन देवी ने फिल्मों में भी अलग अलग किरदार निभाए। उस जमाने में प्रचलित घरेलू और बेचारी महिला का किरदार उन्होंने जितनी आसानी से निभाया, उतनी ही सरलता से वो एक मॉडर्न और सशक्त विचारों वाली महिला के किरदारों में भी ढली। पर्दे पर उनके किरदार महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बनकर सामने आया करते। वो निजी जीवन में भी इसी तरह सशक्त, प्रगतिशील विचारों का आईना बनकर सामने आती।

कानन देवी के प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली तो लंदन के हाई कमीशन में इस समारोह में मुख्य अतिथियों में से एक बनकर वो शामिल हुई। उनके गीत और भाषण इस समारोह में भारतीय गर्व को बढ़ा रहे थे। कानन देवी एक बहुचर्चित सोप कंपनी के विज्ञापन में भी ली गई, जिसे आज तक केवल चर्चित अभिनेत्रियों को शामिल करने के लिए जाना जाता है।

कानन देवी को फिल्मी दुनिया में उनके योगदान के लिए 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1976 में उन्हें फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा भी समय समय पर वो कई सम्मान पाती रही। कानन देवी 17 जुलाई 1992 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं और अपने पीछे छोड़ गईं अपनी बहुमूल्य विरासत और सशक्त सोच।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और गायिका कानन देवी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम का संपादन सौरव घारू। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।